जो मैं तो निवान गर्ल थी एंड रोट ए लॉन्ग सागा ब्यूटीफुल सागा ऑफ पेन सफरिंग इनर सफरिंग नाउ द लैक्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ पंजाब आर वीपिंग.